पई पुनरा शशका काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन बृष्ट गगन ते पई सब हिन्यान बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल पमन के सृजन हारे दाह जान मुहले हुए बारे कबियो बात बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दया रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा

हे बचाव हो। सुखी बस मोर परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोहर छानज कर दया करिया, सब बैरन कौ आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दया मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री हस्तु जो करिए हो रच्छा, राख ले हो मुहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांध दुष्टन के हंता, तुमहो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तसही को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सुवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बाध कियो, घट घट के अंतर की जानता, भले बुरे की पीर पछानता, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, घट घट के पढ़ पढ़ की जान, जब उदकारख करा करतारा, प्रजा तहत तब देह पारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ।

लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री

वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ बारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बेद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कब लेहो सुधारो कबियो बाज दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हों जग माहे जो तेह प्रभ को त्याए हैं अंत सुर्ग को जाहे दोहरा।

दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक बसन महेसा कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा अवसास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुगिया टल सब कोई पाखत नेत सुरगबा सरग बुर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद श्वै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचामन हाड वदी प्रथम सुख दामन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लाहु लेहु सुधारा दोहरा।

नित नित राख उर धारु तम संसार चन लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

चापगवंतु सगल समगरी तुम रूतर तहारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम्हें जानी नानक दास

है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखह प्रभु। नानक दे कर हाथ, सुकाहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु कै।

सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े समालियन देखेगा देवनहार, तेरे दान कीमत ना पवै तसदाते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल, देहो सज्जन आसी सड़िया जो होवै साहिब सो मेल। घर घर एहो पाहुचा सदड़े ने

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुवर, पर पराया हक खा रहे तो सुवर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खोल लेंदे, सारी दुनिया च इस तरह चल रहा है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खोल लेंदियां ने, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खोल लेंदे, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने और की है, अगर इस हिसाब नाल लोगे तो सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए, गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना पराया हक मुरदार है, मुरदा है, ये तो मुरदा खाना है। औखे ना होना, बगौर गहराई नाल देखोगे वड़े वड़े देश छोटे देशां नूं खा रहे ने, मुर्दे खा रहे ने, वड़ियां वड़ियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां ने, वड़े वड़े मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे ने। जद किसे दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा है और की खादा है, इसे नूं हराम कहंदे ने, ये भी महस करदे आ। और महाराज कहंदे ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नूं कख भी नहीं पता चलता, खांदे भी मुरदार ने, अगले नूं कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी दृष्टि ते है, अंधेरे च वेख सकदे ने, रोशनी च नहीं वेख सकदे। तो जो अंधेरे च वेख सकदा है रोशनी च नहीं वेख सकदा, गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत, माया मगन फेरत गोगना। सतगुरु ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी जिसने किया सी महाराज शब्द सारियां दे हिरदियां नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है, सूरज सारियां लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारियां दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर एक करोड़ा सूरजां वर्गा किस तरह होया, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां देच पशुआं देच ओ थोड़े जिया ने, जिन्हां नूं रात दी तारीकी देच ते दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च ये घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, झूठ दे तेरा सामदा है, सच दे कोई नहीं, गंदे गीतां दे तेरा सामदा है, शब्द दे कोई नहीं, बिखे नाद दे तेरा सामदा है, रब्बी संगीत दे कोई नहीं। इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है, दिन नाल नहीं है। तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है, तो इन्होंने साधन भी उस तरह के बनाए ने, क्लब ने, थिएटर ने, शराबखाने ने, वैशियाले ने, जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने, इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे च इक सज्जन मैनूं कहण लगा, उत्थे भी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा आया सी, ते उस दिन किधरे हुक्मनामे की कथा करनी सी, इतवार का दिन सी, राती होवन कालिया सुपे दासे वन, देहो बग्गा तप्पे घना कालिया काले वन। पहले पातशाह जी का वाक है, सूरज दिन चिट्टा चढ़े है, पर कालिया चीजा ते कालिया ने कोई चिट्टिया नहीं हुई, रात काली बोली है, बड़ी भयंकर मसया दी रात, पर चिटियां चीजां ते चिटियां ने कोई कालियां नहीं होईयां।
महाराज कहते ने करोड़ा भी दुष्ट मिल जान संत अपनी सजनता ही नहीं छड़ता, भावे कितनी मस्या की रात हो जाए कितनी कालक हो जाए उदी चिट्याई रहेगी। राती होवन कालिया सुप्पे दा सेवन, मल्ला पहला सोई मल्ला पहला है, पहले पातशाह जी का वाक इनू कबीर अपने ढंग नाल इंज बयान करदे ने, संत न छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़े ओ तो शीतलता न तजंत। इन्हां इलाकें ते चंदन नहीं है, चंदन भारत विच मैसूर स्टेट विच बहुत ज्यादा है, कर्नाटक विच थोड़ा जिहा, तमिलनाडु विच भी है पर ज्यादा कर्नाटक विच है, थोड़ा थोड़ा आंध्रा च भी मिलता है, मध्य भारत विच भी मिलता है, पर अच्छी नस्ल का जिहड़ा चंदन है बावन चंदन ओ कर्नाटक विच है, बड़ा कीमती। अक्सर जद चंदन दे लकड़ की कटाई आती है तो फिर मोर छड़े जांदे ने, क्यों? चंदन नू सप लिपटे होंदे ने, कोबरे फनियर नाक। चंदन बड़ा शीतल है, चंदन बहुत ठंडा है, तो सप दे सिर दे जिहड़ी जहर आउंदी है अगर वध जाए सीमा तो फिर खोलदी है, अगर उस नू कोई जानदार चीज जानदार जीव ना मिले हो सकता है पत्थर में भी डंग मारेगा जहर कढ़ने लई, क्योंकि सिर उसका खोलता है, वह दरख्त में भी डंग मार सकता है। कुछ तो कहते ने उही पत्थर संखिया बन जाता है जिन्हों फनियर नाग डंग मारदा है, भारत देश इस तरह मनते ने वैद लोग उन्हों संखिया कहते हैं। सप चंदन नू लिपटे होंदे ने, चंदन ठंडा भरा है, उन्हां दे सिर नू ठंड मिलदी है। अक्सर उत्थे मोर छड़दे ने ते मोर सप्पां नू खा जांदा है, मोर सप्पां ते हमला करदा है, ते सप डंग मारन विच मोर नू सफल नहीं आउंदा क्योंकि उसदे ऐसे पंख ने उन्हू कोई चोट ते हानि नहीं पहुंचती। अक्सर सप नसदे ने भजदे ने मोरां नू वेख। भगत कबीर कहते ने सैकड़े सप लिपटे ने चंदन, क्या चंदन जहरीला हो जाता है? कि चंदन कोई गर्म हो जाता है? नहीं, चंदन सुगंध ते ठंड सप्पां नू भी देंदा है। संत ते ओ है जिदी महफिल विच बैठ के कोई चोर भी शांत हो जाए, इतनी मेहरस करते हैं। मैं पढ़ रहा सी सूफी फकीर दी गाथा हसन दी, रात दा वक्त अद्धी रात दा, ईरान दी गल, ईरान ठंडा देश, बर्फां पैंदियां, चोर किदे हसन दी कुटिया दे च वड़ गया। हसन लेटिया होया सी उपर कंबल, दया आ गई, इस चोर नू मेरे घर चो कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा, अद्धी रात नू आया है, ठंड दे विच आया है बेचारा, खाली जाएगा। कदी किसे संत ने चोर नू नहीं मारिया, चोरा ने चोर नू मारिया, बगौर मतला करना कदी।

जान लग गया। हसन ने आवाज मारी, मित्रा होर ते मेरे कोल कुछ ने, मेरे कोल कंबल है, तेरे कोल कंबल भी कोई नहीं, बाहर ठंड बड़ी है, ए ले जा, और अपने कोल कुछ भी नहीं, ए ले जा, खाली ना जा, मेरी तोहीन ना कर, मेरी कुटिया चो मेरे घर आंदा ही नहीं कोई, तू आया और अद्धी रात नू आया, खाली जा रहे हैं, मैनू दुख है, मेरा हिरदा तड़पदा, मेरे ते तरस खा, मेरे हिरदे नू तड़पा ना, ए ले जा कंबल। चोर दी सारी चोरी निकल गई, पता है उस चोर ने की आख्या, जिंदगी च पहली दफा किसे अमीर दा घर लभया, आया तो मैं लुटन सी, मैं खुद लुटिया गया। चोर फकीर हो गया हसन दी संगत नाल, हालांकि उसनों चोर ते भी तरस आ रहा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते कितनी काली रात होवे, चिट्टियां चीजां ते चिट्टियां ही रहिंदियां ने, कोई कालियां थोड़ियां हो जांदियां ना, और कितना ही चिट्टा दिन तपया होवे, चारों पासे उसने रोशनी चिट्याई फैलाई होवे, पर कालियां चीजां ते कालियां ही रहिंदियां ना। पंक्ति मैं थानू फिर सुनावा, राती होवन कालिया सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तपे घना कालिया कालेवन। कितना भी सूरज चानना करे, कालियां चीजा कालियां ही रहिंदियां ना। कितनी रात कालख वंदे, चिटियां चीजा चिटियां ही रहिंदियां। ये जो कहिंदे ने माहौल ठीक नहीं, की करिए, माहौल जरा ठीक हो जाए फिर असी ठीक हो जावांगे, सब बहाने बाजियां ने। अंधेरी रात विच भी चिटियां चीजा चिटियां रहिंदियां ने, कितना ही माहौल खराब हो गया। माहौल ते प्रहलाद का भी ठीक नहीं सी, प्यो वैरी है ते जेल विच पाया होया ते चार चार दिन का भुखा, वो जेल विच भी समाधि ला लैंदा, असी घर विच भी नहीं ला सकते। वो चार दिन का भुखा है, सुरत शब्द नाल जोड़ लैंदा है, इत्थे भर पेट भी मनुख नहीं जुड़दा है। उत्थे प्यो जान दा वैरी है, फिर भी वो प्रभु नाल जुड़े होया है, इत्थे मां बाप दा लाड मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी प्रभु नाल जुड़ना नहीं है। माहौल ते प्रहलाद दा भी ठीक नहीं है, माहौल राम दा भी ठीक नहीं है, बनवास है, रात रुखां तले कटना हुंदा है, दिन नूं किधरे भोजन नसीब होएगा कि नहीं, कि कंद मूल खा के गुजारा करना होएगा, जिंदगी ते कुछ भी नहीं है, माहौल ते ठीक नहीं है। लेकिन वो जिथे भी ने जंगल देश भी मंगल है। माहौल कृष्ण दा भी ठीक नहीं है, राज घराने दा लड़का है, पाल दे गुजर पे ने, ग्वाले पे पाल देना, शाही खानदान दा लड़का ग्वाले पे पाल देना, ये सब बहाने बाजियां ने, जरा माहौल ठीक हो जाए अमृत भी छक लवांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए एक कलगीधर पातशाह सी तेरी रहत बहत भी रख लेंगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी अमृत वेले भी उठांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी नाम भी जपांगे, सब बहाने बाजियां ने। माहौल कदी ठीक नहीं होंदा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहिंदी है, सारी जिंदगी रहिंदी है कुछ ना कुछ तो होंदा। सागर लहरां तो बिना नहीं आउंदा, जिंदगी समस्यावां तो बिना नहीं आउंदी, कुछ ना कुछ तो समस्या रहेगी। माहौल गुरु नानक दा भी ठीक नहीं, पिता मखट्टू कहिंदा है, ममता दी मारी हुई मां कहिंदी है, एको ही पुत्र है मेरा सुदाई है, सुदाई है। बेदी कहिंदे ने पोतना बेताला है, बेदी होंदे होया जनेऊ नहीं पहनदा, बेदी होंदे होया वेदां ते

शहर दे सैकड़े धार्मिक मंदिर, हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए, होंदा ते है चंदन दा बूटा पर हर जगह नहीं आउंदा, हर जंगल दे च नहीं आउंदा। होंदा ते है केसर पर हर जगह नहीं आउंदा। सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च आउंदा है, कश्मीर दे च आउंदा है, एक अद मुलक होर, बाकी किधरे नहीं आउंदा। बड़ा बोके वेख्या गया है, नहीं आउंदा। इधर हिमाचल दे च भी बोके देखा गया, नहीं होया। कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बोके देखा गया, नहीं होया। बीच के देखा गया, नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते कश्मीर नूं जिहड़ी सड़क जांदी है उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश, उत्थे आउंदा है, और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत, होंदे ते ने धार्मिक मनुख, गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे। होंदा ते है केसर हर जगह नहीं आउंदा। होंदा ते है चंदन हर जगह नहीं आउंदा। होंदे ते ने हीरे पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। होंदे ते ने संत हर शहर दे च नहीं आउंदे। हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, हर शहर दे च धनवान होंदे ने, कारोबारी होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर राजनीतिक होंदे ने, हर शहर दे च संत नहीं होंदा, भगत नहीं होंदा। हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना, हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, दार्शनिक फिलासफर होंदे ने, हर शहर दे च कलाकार होंदे ने, हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, चोटी दे धनवान होंदे ने, हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए, एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहीदी है धर्म नू समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है, बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होणगे, कोई धर्म दी समझ रखदा होवे, ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा है, बहुत घट आउंदा है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहीदी है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं, ते इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा, किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं, पर कंठ तक गल आ गई है, मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा, बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा, बहुत सारे गुरद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा। हुण होर भी मैनूं कहण देणा, बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। बहुत सारियां धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रहियां ने, धार्मिक क्रिया है, धार्मिक नहीं है। कारण जद प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ नहीं, तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होवेगा। प्रभु नू कहंदे ने ओ घर है, घर है। गुरु नू कहंदे ने ओ दर है, ते गुरबाणी कहंदी है दर घर की सोजी ना। बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तिन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीरत साहब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया किन्नी भगत प्रेम लिवलाई उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती तन गुरु नानक साहब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी की भगती की थी। आरंभता है प्रेमा भगती तो तन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं की थी। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती लई सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां जे मूं पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां जे मूं पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली बाहर दी भटकना तो बचा सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने आ, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती होई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दिती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक एहो जी शक्ति टिका दिती, ऊर्जा टिका दिती, जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकनाती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा दिंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहा कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना तो चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच उह पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदो ए अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदो रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है चंद्रमा जे इस पासे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग को तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर लेहु भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदाहर
0: आप त्रैलो कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकास के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक रवहि खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करहो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ताकी पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए अस्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ते फल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरण ताका दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

पवैनिदारी तगना पैरी तगना हाथी तगना जीवा तगना अखी वे तगा आपे वत्ता वट धागे वरा कत्ता लै पहाड़ करे वे आहो कड़ कागल दसे।

हे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जाय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजय त्रिपौन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: Hi, yeah. So the Musa, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंदाजन 10-11 दिन तो दास एक लड़ीवार विचार आपनों सरवन करा रहे है। सो दर के हा, सो घर के हा, जितबे सर्व समाले, वाजे नार अनेक असंखा, केते वावण आरे। ज्ञानी भुपेंद्र सिंह जी थानू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत बारे विस्तार सहित इतिहास दे पन्नियां दे चों बड़े खुश असरूबी नाल सरवन करा रहे सन। सिर्फ एक नुक्ता रखे मैं अगे चला। आद काल तो सत ते सता दी बनी नहीं है, करीबन करीबन सता सत नूं पसंद ही नहीं कर दी रही, क्योंकि सता खड़ी च उठते हैं, फरेब ते खड़ी है, धोखे ते खड़ी है, दूजे नूं जीतण ते खड़ी है। इस वास्ते वक्ती तौर ते झूठ झूठ जिहड़ा है जितदा रहा है, जितदा है। कई झूठी है, राम सच्चे ने पर कई ने 14 साल का बनवास दे ही दिता है। झूठ दी जित दिसदी पई है। कंस जालम है, झूठा है। कृष्ण सतवादी ने ओदे माता पिता देवकी ते वासदेव सतवादी ने, पर कंस ने ते जेल विच पाई दिता। वक्ती तौर ते झूठ दी जित होंदी है। प्रहलाद सच ते खड़ा है, हरनाकश झूठ ते खड़ा है, पर जद प्रहलाद नूं भुखा प्यासा जेल विच रखिया होवेगा, पहाड़ां तो सुट्टिया होवेगा, तरह तरह दे तसीहे दित्ते होणगे, साफ दिसदा पिया होवेगा झूठ दी जित हो गई, जित हो गई। इसे तरीके दे नाल होर अगे चलो। ईसा सच ते खड़े ने, पर सच ते सोली ते टंगे होया, ते झूठ तमाशा पिया देखदा है, झूठ सिंघासन ते। झूठ सिंघासन ते बैठा है, सच दा रैबर सुकरात ओनू जहर दा प्याला दे के तड़पा के मारिया जा रहा है। दिसदा है वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है। बाबर सिंघासन ते बैठा है, गुरु नानक बाबल दी जेल देचने। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी देने। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ग्वालियर दी जेल देच बंद ने। झूठ ते सिंघासन ते बैठा है झूठा औरंगजेब, सच चांदनी चौक दे शहीद हो रहे, जला गर्दन उड़ा रहे ने। झूठा सूबा सरहंद ओते सिंघासन ते बैठा है, पर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले सच दे मजस्मे दीवारां दे चिणे जा। हुण मैं इन्ने ही टूक दोहरा के था कि मैं लड़ी जो छेड़ी हुई सी वो अर्ज करा। वक्ती तौर ते झूठ दी जित होंदी है, लेकिन कूड़ निखुटे नानका ओड़क सच रही,
ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਖੁਲਦਾਬਾਦ। ਖੁਲਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਖੁਲਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਉਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਰ ਤੇ 8-10 ਦਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 3-4 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਲ ਜਾਂ ਦਿਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਨਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਬਰੇ ਹੈ, ਗੁੰਬਦ ਇਤਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖਵਾਜਾ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕੱਚੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਜੌਰ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬਰ ਤੇ, ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਦਮੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜੌਰ ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ
कबर ते रात नू दीवा जलदा है, पर जिनू तू चांदनी चौंक दे शहीद कीता उथे माया दे दरिया पे चलते। जितनू चांदनी चौंक दे शहीद कीता उथे हजारां मुसाफर रोज लंगर छकदे, सैकड़े मुसाफर रोज रात बसर करदे ने। इस सब कुछ देख के फिर यही पंक्ति कहनी पैंदी है, कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। वक्ती तौर ते भावे झूठ दी जित होंदी है, इस तो आम कच्चे मनुख डोल जांदे ने, पर आखिर जित सच दी होंदी है। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। हुण मैं इतना लवज वक्ती तौर ते दोहरा दे हां, वक्ती तौर ते सता सिंघासन ते बैठ दी है, सत तत्ती तवी दे अंदर कच्चे हिरदे डोल जांदे ने, पर अंजाम ऐसा होंदा है आखिर विच सच सिंघासन ते आउंदा है, और जिहड़ी सता है उते मलिया मेट हो जांदी है, कुछ भी नहीं। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उपदेश संदेश अज भी सारी दुनिया विच अलापिया जा रहा है, गाया जा रहा है, समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है। 10 तरीक नूं दास ने ऐ मजमून आरंभ कीता सी, सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व समा। घर ते दर दोहां दा जिक्र कीता है। घर दे च आण वास्ते पहले दर ते आना पैंदा है, ते दर घर तो अलग नहीं आउंदा। जिस दर दे राही घर दे च प्रवेश मिले वो दर घर दा हिस्सा होंदा है, अलग नहीं कर। दो शब्द मैं दोहरावां खुलासा बाद दे, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है ओही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है ओही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, और जो प्रकाश दे रूप दे च घर है ओही शब्द दे रूप दे च दर है, जो शब्द दे रूप दे च दर है ओही प्रकाश दे रूप दे च घर है। प्रकाश दे रूप दे च घर परमात्मा है, शब्द दे रूप दे च दर गुरु है। नानक सौदे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही में। व्यापक है परमात्मा, व्यापक है गुरु। जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं वो गुरु भी नहीं। सदा अंग संगे अभंगंग बेबोते परमात्मा, गुरु मेरे संग सदा है नाले व्यापक। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं। प्रकाश दे रूप दे सता दे रूप दे शक्ति दे रूप विच परमात्मा व्यापक है, शब्द दे रूप दे परमात्मा व्यापक है। शब्द नूं दर क्यों कहा है, ये सारा संसार शब्द तो आया है। दरवाजा दो काम करदा है, तुसी दरवाजे दे राही अंदर दाखिल हो जाओ, ऐसे ही दरवाजे दे राही बाहर जाओगे। दरवाजे दे च बंदा बैठदा नहीं, सौंदा नहीं, दरवाजा आन जान नहीं आउंदा। शब्द दे राही संसार दी उत्पत्ति आउंदी है, शब्द दे राही परले हो जांदी है। पंक्तियां सुनो, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है, शब्द तो परले हो जांदी है, फिर शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है। हुण मैं दोहरावां, समा है नहीं सी, इस वास्ते अंदाजन आखिया जा सकदा है, करोड़ां अरबां साल तक, भावे साल नहीं सन, समा नहीं सी, इंज अंदाजन कहिए, करोड़ां साल तक धुंदी धुंद सी, धुंदी अंधेरा ही अंधेरा सी, धुंध करके।
एक दिन जोर दा धमाका होया, आवाज होई, शब्द होया, कीता पसाओ एको कवाओ, दिसते होए लख दरिया। उस कवाओ तो उस आवाज तो लखां जिंदगी दे दरिया चल पे, लखां ही जिंदगी दे दरिया। एक मिनट इसनो मैं दोहरावा, वो आवाज की सी, ओनू कलगीधर पातशाह कहिंदे ने, वो आवाज ओहंकार सी। ओहंकार आद कथनी अनाद, ये अनादि कथनी है, ये ब्रह्मंड दी पहली

मैं एक दफा जींद दे च गऊ लै बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी, चंगी लगी मैनू। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरखां दा डेर है वह मनांदे ने, संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਂਦ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਇਹ ਗਊਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗਊਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜੀਂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗਊ ਤੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਐਸੇ ਨੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਰਾਖੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗਊ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਖੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚੱਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਦਮ, ਦੋ ਕਦਮ, ਗਿਰੇਗਾ, ਗਿਰੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਿਰੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਦਮ, ਦੋ ਕਦਮ, ਗਿਰੇਗਾ, ਗਿਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾ। ਵਾਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚੱਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਦਮ, ਦੋ ਕਦਮ, ਗਿਰੇਗਾ।
धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे, चल भी रहा ते गिर भी रहा। सच बोलिया चल पिया, झूठ बोलिया गिर गया। अंदर दया दा वासा होया चलिया, अंदर कठोरता दा वासा होया गिर गया। अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे, अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गया, गिर गया। अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया चल पे, पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न दा चाव पैदा हो गया, गिर गया। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहेंदा। धार्मिक तरते ते कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहते, कुछ भी नहीं, चलते ने गिरते ने, सत्संग भी कर लेंगे ने, कुसंगत भी कर लेंगे ने, दान भी कर लेंगे ने, बेईमानी भी कर लेंगे ने, सच भी बोल लेंगे ने, झूठ भी बोल लेंगे। जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है, बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है, भई ये 70 साल दा है, 80 साल दा है, 90 साल दा है, कहिंदन उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो, अकल करके नापो। अकल कितनी है, समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने, अकल करके बच्चे ही होंदे ने, बच्चियां दी गल करदे ने, बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है, कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने, अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते 5.5 वर्यां दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, जिस दिन गुरगद्दी ते बैठे ने। अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने, महान ने। शरीर करके जो दीवारां दे चिने जा रहे ने, मासूम बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है, शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए, अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलीफोर्निया दे कई गुरुद्वार च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जाते हैं गुरुद्वारे, दिन भर ताश खेडते हैं कई गुरुद्वार, गप्पा मारते हैं, निंदा उस्तत करते हैं, फिर जो संध्या होने लगती है, रहराज साहब का पाठ शुरू होता है, कथा कीर्तन का वेला भजते हैं, इंज जिमें बिच्छू कटेगा भजते हैं। गुरुद्वारे का नाम है की लिया, मैनू कहना पिया एक नू जद जान लगे, मैं कह 3 जथियां का कीर्तन है अज, एक जथा दरबार साहब तो आया, 2 होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने, ते मैं कथा भी करनी है, रुक जाओ। कहिंदे इह ते हुंदा ही रहिंदा, इत्थे होर की होना, इत्थे हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनू कहना पिया, ये उम्र करके बुजुर्ग ने, अकल करके बच्चे ने, अकल करके बच्चे। गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वर्यां दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नू कहिंदा है, तू जपया कर जल हरनाकश थर हरनाकश, जब तू जपेगा ते तेनू देख के बाकी बच्चे भी जपणगे। ते 7 वर्यां दा प्रहलाद कहिंदा है, बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। 7 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करता है, और 60 साल का बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है। बच्चियां दे कदी कदाई कोई
कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़िया दे च बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी वर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी एवें गवाई जांदे ने। ताश खेडदिया होया नो एक सज्जन ने पूछ लिया, की कर रहे हो? समा पास पै कर दे। फिर मैनू विचकार बोलना पे, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया है। अजो समझ कुछ बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, तो संभाल कर ले। पर नहीं, अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकलस्त, नखे बा साल, तवंगरी बा दिलस्त, नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोले इतने मकान ने, इतनिया महल माड़िया ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने, ए अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है। दिल तो ना पो। मुहम्मद साहब दे निकटवर्ती हजरत उमर, ए बसरा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर होई, नखलिस्तान उसनों कहने जिते चार पांच दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहंदे ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन नूं, उठ नूं दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे कि भिखारी आ गए। भिखारी नहीं सी, पर चूंकि मंगदा पिया सी, इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया, हजरत मैं तीन दिन का भुखा। कूत शहर विच मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हाँ, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा, नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार रहे, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या? तू तीन दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ए ले तू। उस मनुख ने आख्या, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है, अमीर मनुख। दोपहर का वकत सी, महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे ने, नाल चेला है आनंद, जो रिश्ते दे चचेरा बिरा सी, चेला बन गया सी, नाल सी। उन्हें करमंडल पानी का नाल भर लिया, बई दोपहर का वकत, बिहार की गर्मी, आखिर दो को दा पेंड है, चार मील का पेंड है, अजे अद्धी वाट तय होई होवेगी। महात्मा बुद्ध ने आख्या, आनंद तू नाल पानी लियांदा? हां लियांदा, दे। करमंडल दे दिता, सारे का सारा एक बूटे च पा दिता। आनंद कहिंदा, भगवान सानू प्यास लग सकती है, अजे ते रस्ता बहुत रहिंदा है, अद्धी वाट तय हुई है, सानू भी प्यास लग सकती है, तुसी सारा पानी दे दिता। महात्मा बुद्ध ने आख्या, सानू प्यास लग सकती है, ये प्यास तो मर रहा सी, मर रहा सी,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਵੱਖ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਾਨੇ। ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਰੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਵਿਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਖੋਗੇ? ਮਹਾਸ਼ੋਮ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ। ਲਕਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੂਰੀਆ।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।